गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते नमस्कार सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड and to also ignite sparks of spiritual inspiration to you and your loved ones. Aur ae bahare baagh duniya chand roz, dekh lo iska tamasha chand roz. Aur ae musafir kucha ka saman kar, is salaame hai basira chand roz. From Trinidad and Tobago, my name is Boy Muhammad, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer, presenter, Richard Aziz.

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?

बिल्कुल आंख मूंद करके सुन रहे थे हम आपकी आवाज को, महसूस कर रहे थे आपके जज्बात को। भाई इस जिंदगी के सफर में उम्र बढ़ती ही रहती है और फिर हम खो बैठते हैं वो खूबसूरत दिन जब गर्मियों की छुट्टी में हम भी मज़ा लेते थे। अब तो पता ही नहीं चलता कि कब मई, कभी जून, कभी जुलाई बीत रही हैं, लेकिन जब आप संगीत की महफिलों में आते हैं तो वो दौर, वो वक्त, वो मंजर जो है हर गीत के साथ हम आपके सामने लेकर आते हैं। याद कीजिए वो मंजर, कॉलेज के वो दिन, और इम्तिहान के रिजल्ट लग चुके हैं, दिल में तमाम अरमान लिए आप जो है इस नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और हर लड़के लड़की की जुबान पर यही गीत है जो आज इस महफिल में आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खूबसूरत गीत को आपकी नज़र करने के लिए मैं आलोक काटदरे इनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आओ आलोक, मेरा कहना तो ये था लेकिन आलोक का कहना कुछ और है, तो वो भी अपने अंदाज आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।

भारत पाकिस्तान मैच कौन जीतेगा? इंडिया। और इंडिया का कैप्टन कौन है? विराट कोहली। कब हम जीतेंगे? विराट के पापा क्या कहेंगे सुनेंगे आप।

थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. आज द आर्क इवेंट के द्वारा ये शुरू किए गए इस खूबसूरत संगीत में सफ़र में जो जितने भी हम सफ़र बने हैं उनके बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा. हमारे रंजन देवनाथ रंज एक ऐसे कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं जो खुद गज़लें लिखते हैं और उनकी गज़ल के ही एक कलाम है जो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ कि फूलों सा खिलते रहना तुम, अपनों से मिलते रहना तुम. राह कठिन आसान हो जाएगी, राह कठिन आसान हो जाएगी, संग संग मेरे चलते रहना तुम. और मंत्र मार के बोल रहा हूं, जीवन भर यूं ही सदा फलते रहना तुम. क्योंकि जब भी महफिलों में मेरे आओगे आप तो मैं उन तमाम मंजरों को आपकी नजर करूंगा, वहां ले जाऊंगा उस किनारे, समुंदर के किनारे जहां पर आप पहली बार किसी से मिले थे, दिल की बात का इजहार किया था, उस मंदिर में जहां पे आपने मन्नतें मांगी थी, उस वादियों में जहां पर अपने दिल की बात आपने कही थी. ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज इस महफिल में आ रहा है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से सजा आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत है जो लता जी का गाया हुआ है और इसकी शुरुआत अनूप जलोटा जी करते हैं. फिल्म का नाम एक दूजे के लिए है और इस नायाब गीत को आपकी नजर कर रही हैं शैलजा सुब्रमण्यम और उनका साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त राहुल जी. वाह क्या बात है, आइए मजा लेते हैं इस गीत.

0: सांस और आवाज का ये खूबसूरत मिलन बिल्कुल प्रेमिका की तरह होती हैं बांसुरियां। किरण विनकर जिसके आशिक हैं माशुक हैं। और रही बात रिधम की तो कुछ जवाब ही नहीं, आज सभी जो है जम के अंजाम दे रहे हैं। जब दिमड़ी बजती है हमारे आशीष की डफ, हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, एक अनोखा संगीत और उसका ये जादू हम महसूस कर रहे हैं आर्क इवेंट के इस जर्नी में, इस खूबसूरत सफर में। खैर आज इस महफिल की ये बहुत ही प्यारी गायिका हमेशा जिन्हें आमंत्रित करने का मौका मिलता है तब मेरे अंदर अजीत साहब आते हैं और मैं फिर से कहने जा रहा हूँ माय डियर मोना।
1: कम्बक नाम ही ऐसा है कि
0: तो अब आपने क्या सोचा है कि नाम बदली कर दें?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
0: तो आपका गाना तो यही कह रहा है कि अभी
1: नाम पता है मुझे डार्लिंग के लिए कहने के लिए शेर का जिगर
0: नहीं
1: होना चाहिए है कि नहीं?
0: ये बात तो है और ऐसा जिगर इनके साइकेट्रिस्ट हस्बैंड के पास ही है। हाँ जी नामो होता है
1: उसमें भी दम है
0: उसमें लेकिन मोना नाम इतना अच्छा है क्या करे, लेकिन उसको उनको शायद ये नाम पसंद नहीं है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: है ना,
1: मुझे बिल्कुल पसंद है,
0: बिल्कुल पसंद
1: और
0: है।
1: कोई नाम मुझे जचेगा ही नहीं।
0: फिर अभी ये क्या कहने वाली हैं आप?
1: अब तो कैरेक्टर में घुसना है मुझे।
0: अच्छा तो नाम चेंज करके
1: नाम चेंज कर
0: चलिए नाम चेंज हो रहा है लैला का, नैना मोना का।

ये आपकी आंखें भाई, तालियां तो बनती हैं आशीष आरोस कर इनके। ड्रम सेट पर हमारे बबड़ी पालो, और मैं चाहता हूं कि ये जो शोर है आपके लिए है। ओए क्या

0: फिल्म में अक्सर एक हीरो होता है, लेकिन लाइव शो में हर कोई हीरो है आज यहां पर। क्या कहें इन सब के बारे में यार, आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं, और देखिए खूबसूरत नगमे एक के बाद एक आपके नजर हो रहे हैं, और इन सभी को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं ये दिग्गज हमारे जौहरी तमाम साजिंदे। तालियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। लैला के इस खूबसूरत अंदाज के साथ मैं उस लैला को फिर एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं हमारे चिराग जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और बड़े खामोशी से जो है आप गीत पेश होना चाहिए, हाँ, क्योंकि दिल की बात बड़ी खामोशी से की जाती है, ये मुझसे बेहतर मेरे दोस्त चिराग जानते हैं। चिराग जिन्होंने मुकेश जी के अंदाज के साथ इस शाम की शुरुआत की थी, सुरेश वाड़कर जी, और अब हरिहरन साहब का अंदाज जो है आपके नज़र कर रहे हैं, और आप सभी ये बात जानते होंगे कि रफी साहब के भी गीत वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ गाते हैं।
1: मैं इसके भी गाता हूं, अभी आज गाने वाला हूं।
0: आइए मजा ले इस गीत का फिल्म खामोशी से।

वाओ नागेश कोड़ी, जो कि हर महफिल की शान बनते हैं हमेशा अपने सैक्सोफोन क्लैरिनेट के साथ में। प्यार हमेशा बड़े खामोशी से ही होता है, यह एहसास है जिसे हम महसूस करते हैं, और यही बात कहने जा रहा है अगला गीत, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ और पंचमदा के संगीत से सजा ये बड़ा ही खूबसूरत गीत है, कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ, फिल्म 1942 लव स्टोरी से। इस खूबसूरत गीत को उसी खूबसूरत अंदाज के साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं फिर एक बार शैलजा जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और एहसास कराएं उस पहली मोहब्बत का, उस प्यार का।

हिंदुस्तान के आवाज़ की दुनिया में एक बहुत ही प्यारी आवाज़ है एसपी बाल सुब्रमण्यम जिनका नाम है, और इनकी आवाज़ से जिनको ये पहली फिल्म में आवाज़ मिली वो आज सुपरस्टार हुए हैं। इतने उनके स्टार बुलंद हैं कि हर केस से आज़ाद हुए हैं। सलमान खान साहब पर फिल्माया गया ये गीत आ रहा है महफिल में, चित्रा जी ने उनका साथ दिया है एसपी बाल सुब्रमण्यम का, और फिल्म का नाम है लव लव लव। लीजिए इस लव और लव के दीवानों के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं मोना जी एंड ऑफ कोर्स चिराग किरण कुमार पांचाल।

0: बड़े
1: एक बार मैं हाँ क्या बात है
0: सोनल एंड वीना के लिए हाय हाय क्या बात
1: अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम वंडरफुल वंडरफुल
0: बड़े खामोशी के साथ 1942 से ये लव का सिलसिला जो है पेश हो रहा है इस खूबसूरत सुहाने सफर में आर्क इवेंट्स के द्वारा. आर्क इवेंट की हमारी ये टैगलाइन है कि आर्क इवेंट लेकर आते हैं इवेंट्स जिंदगी में आपके लिए. जी हाँ, आज ये खूबसूरत शाम बड़ी खूबसूरत बीत रही है आप सभी के साथ. और फिर एक बार ये दो दिलों की दास्तां जो है परदेश से आए हमारे दिलो अजीज दोस्त आलोक काडरे कुमार सानू जी के अंदाज के साथ हमारे नजर कर रहे हैं.

0: हाय,
1: थैंक यू।
0: ये लगातार ऐसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों के साथ साथ हम ये महसूस करने लगे हैं कि ये सफ़र हमारा बीत रहा है खूबसूरत हरी भरी वादियों के साथ, जहाँ पर प्यार और प्यार की महक जो है आ रही है, और अब जो है इस महक का जो रूपांतर हुआ है नशे में, प्यार का नशा क्या होता है। 90s का बड़ा ही सुपरहिट गीत आप सभी की नज़र अब हो रहा है, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत, जिसे प्रस्तुत करने के लिए शैलजा सुब्रमण्यम और मेरे दोस्त चिराग मंच पर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं जो जीता वही सिकंदर से इस नायाब गीत को।

थैंक यू सो मच शैलजा जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिर एक बार आप सभी संगीत के चाहने वालों का, साथ ही साथ हमारे सभी स्पॉन्सर टर्टल मिंट एंड ओडिन इंश्योरेंस बुकिंग सर्विस LIC एंड श्रीकांत बाबूराव हरचिकर ज्वेलर्स का। और जबकि शैलजा जी हैं, दिल हमारा बड़ा है आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म रोजा का बड़ा ही खूबसूरत गीत आपके नजर हो रहा है, आइए सुनते हैं इस गीत को।

तेरे मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था,

0: अब चलते हुए गाओ।
1: रिम झिम छम छम गुन गुन तिल तिल पल पल रुन झुन रुन झुन
2: रिम झिम छम।

0: त्रिभुवन बोलो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन
0: शाबाश आगे आगे
1: बिन बदरावर से सावन
0: शाबाश चलो आगे आगे आगे बढ़ो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन
0: फिर से चलो
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन
0: शाबाश आगे आगे आगे, आगे।

0: बोलो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन,
0: शाबाश, आगे आगे।
1: बिन बदरावर से सावन,
0: शाबाश, चलो आगे आगे आगे बढ़ो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
0: फिर से चलो।
1: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
0: शाबाश, आगे आगे आगे।

0: ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?

पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?